हरको यत्न पाकिली फुल जे जय कगी जे कुने खदै दे पाच्चे को एना आई न सुनी बाई आई न सुनी आई आई न